फ्री एफ एम 89.0 पे आप सुन रहे हैं आपका अपना शो मुसाफिर हूं यारो। अच्छा, लोग कहते हैं कि कहानियां भी ना बिखरे पत्तों की तरह कहीं भी मिल जाती हैं, तो आज की एक छोटी सी कहानी, हम सब की कहानी। अमन नाम का लड़का इंडिया से आया था, सपना था कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, पर पहला साल सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल, पार्ट टाइम जॉब्स, लोनली नाइट्स और एक सवाल, क्या सही फैसला था? और फिर एक दिन उसने देखा कि ऑटम के पत्ते गिर रहे थे और उसे लगा कि शायद गिरना भी जरूरी है संभलने के लिए। अमन की तरह हर माइग्रेंट भी कुछ पत्तों की तरह होते हैं, ना पूरी तरह से टूट पाते हैं और ना पूरी तरह से जुड़ पाते हैं, पर हवा के साथ चलना सीख लेते हैं और शायद यही जिंदगी है। और आप भी किसी सफर में हैं तो याद रखना, गिरना, बदलना, दूर जाना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है और हर पत्ता अपनी कहानी के साथ खूबसूरत होता है।

मुझे आज भी याद है वो मेरा न्यूजीलैंड का पहला ऑटम। सब कुछ एकदम फिल्म जैसा लग रहा था। येलो ऑरेंज लीव्स पत्तों से गिरते हुए, फॉगी मॉर्निंग्स, पर उस खूबसूरती के बीच ना एक अजीब सी लोनलीनेस थी। वो शायद हर एक माइग्रेंट का मोमेंट होता है जब वो रुककर यही सोचता है कि क्या मैं वापस घर जाऊंगा या फिर यही देश मेरा घर बन जाएगा। बॉलीवुड में हर एक हीरो स्ट्रगल करता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, कभी प्यार खो देता है, और हम माइग्रेंट्स, हम तो उनसे भी बड़े हीरो हैं यार। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी बैकग्राउंड में म्यूजिक रियल नहीं होता। फोन के अलार्म, व्हाट्सएप कॉल की रिंगटोन, लेट नाइट बसेस, लेट नाइट शिफ्ट्स, और फिर भी हम स्माइल करते रहते हैं। पत्ते गिरते हैं तो आवाज नहीं करते, बस हवा के साथ चल पड़ते हैं। जैसे हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है, बस बाहर से कहते हैं हाँ जी सब बढ़िया। फ्री एफएम 89.0 पे आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि लेट नाइट ड्राइव्स इन न्यूजीलैंड हिट डिफरेंटली? खाली खाली सड़कें, रेडियो शो और दिमाग फुल स्पीड। कभी कभी लगता है कि हम यहां सपने पूरे करने के लिए आए थे, पर रास्ते में खुद को ही ढूंढने लग गए। और अगर आप भी इस रात में कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो प्लीज स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ। और ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

आज की रात अगर आपको आपके घर की याद आ रही हो ना, तो उस याद को फील कीजिए, क्योंकि वही यादें हमें इंसान बनाती हैं। और हाँ, याद रखिए कि ऑटम के बाद विंटर आता है, पर उसके बाद स्प्रिंग भी जरूर आता है। आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो ऑन फ्री एफ एम 89.0, और मैं हूँ आपका दोस्त। और आपसे कहता हूँ कि अपने सपनों को संभाल के रखिए और दिल को थोड़ा बॉलीवुड रहने दीजिए।

कभी कभी ना लाइफ थोड़ी सी यहाँ की सड़कों जैसी लगती है, लंबी, ठंडी और थोड़ी सी साइलेंट। और उस साइलेंस में सिर्फ दो ही चीजें अच्छी तरह से सुनाई देती हैं, एक हवा और दूसरी यादें। और आज का ये शो भी उन लोगों के नाम है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही हंसते हैं और फोन के कट होने के बाद सिर्फ चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, जबकि रूम में हीटर भी हाफ चल रहा होता है और दिल भी। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे दो चीजें हैं जो बिल्कुल फ्री मिलती हैं, कोल्ड वेदर एंड ओवरथिंकिंग। और अगर आप भी माइग्रेंट हो तो एक और चीज फ्री में मिलती है, फेक स्माइल्स। मतलब अपने फ्लैटमेट के साथ तो सारे एक तरह से चिल कर रहे होते हैं, बट रात को सभी सीक्रेटली इंस्टाग्राम पे इंडिया के रील्स देख रहे होते हैं। कोई चंडीगढ़ को मिस कर रहा होता है और कोई मुंबई की बारिश को और कोई बस किसी को। और फिर एक बंदा बोलता है कि भाई लाइट्स ऑफ कर दो, सुबह शिफ्ट है। पर असली बात होती है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे।

और आज ऑफिस से आते वक्त मैंने देखा कि एक पत्ता हवा में घूम रहा था। ना उसे पता था कि कहाँ गिरना है और ना उसे पता था कि कहाँ वापस जाना है। और ऑनेस्टली उस पत्ते में मुझे एक कहानी दिखी, जैसे हम सभी बस हवा के भरोसे, बस उम्मीद के भरोसे और एक लाइन पे जीते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। और कभी कभी हम बस सब ठीक होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। जॉब पे स्माइल, फैमिली को कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया पे एस्थेटिक लाइफ, पर असली सीन लॉन्ड्री पेंडिंग, बैंक अकाउंट क्राइंग और दिल कंफ्यूज्ड। पर फिर सैलरी आती है और बंदा कहता है कि चलो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है यार।

बॉलीवुड ने ना हमें एक बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन दी है कि देश से बाहर जाते ही ना लाइफ स्लो मोशन हो जाती है, पर असलियत में यहाँ पे तो हर काम करने के लिए स्प्रिंट लगानी पड़ती है। पर फिर भी कभी कभी सनसेट देखते हुए लगता है कि यार वर्थ है, और उसी मोमेंट में लाइफ एक मूवी सीन बन जाती है। और आज रात अगर आप भी लोनली फील कर रहे हो तो बस एक बात याद रखना कि हीरो कभी फर्स्ट हाफ में नहीं जीतता, इंटरवल के बाद ही कमबैक होता है। और आप अभी इंटरवल में हो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अभी हो गया है शो का क्लाइमैक्स, यानी कि हो गया है मेरे जाने का वक्त। बट हम मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पे, इसी फ्रीक्वेंसी पे, इसी टाइम। और तब तक आप अपनी कहानी लिखते रहो और दिल को थोड़ा सा फिल्मी रहने दो।